साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दा उच्चारण की, जिस शब्द अंदर सतगुरु जी सानू जोत दी पहचान दसते ने, पर तुसी तको साहिबां दा इतिहास पढ़ के कि साहिबां नू बचपन विच ही कितनी लगन सी। कहिंदे ने जदो बच्चियां नाल खेलदे प्रभु भगती दियां गल्लां करदे ते बच्चे कठे होके सतगुर दे इर्द गिर्द बह जांदे, साहिब जी सानू भी उस मालिक दियां गल्लां सुनाओ। कहिंदे ने सारा सारा दिन बीत जाना, उन्हां बच्चियां ने सतगुर दे मुखो मिठे मिठे बोल सुन के अपने घर जाना भी भुल जाना। ते जिस वेले रात पैनी, सतगुरु जी ने भैन जी नूं बेनती करनी, भैन जी ना तां मेरा चित करदा कि इन्हां बच्चियां तो दूर होवां ते ना ये बच्चे मेथों दूर हुंदे ने, ते तुसी किरपा करो रात दा भोजन असी कठे ही छकांगे, कठे ही खावांगे, तुसी इन्हां लई भी भोजन तैयार कर लो। सो कहण तो भाव सतगुरु ने केवल ये बचन आख्या नहीं, पहले बचन नूं कमाया कि सब अंदर परमात्मा दी जोत नूं वेखण। छोटे छोटे बाल जो नगर दे विच रहण वाले ने, ओ जे घर विच आ के बह गए ने ते इको जगह बैठ के प्रसाद छकना है, किसी प्रकार दा कोई पिन पेत नहीं रखना। इसलिए साहब कहिंदे ने भाई आओ आपां जोत वेखी।

कि भाई इस संसार विच जेड़ा भी मनुख आया है उस अंदर जोत एक परमात्मा दी ही है, क्योंकि जोत तो बिना कोई भी इंसान नहीं है। धन गुरु अमरदास पातशाह का उपदेश है, ए शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी तां तू जग में। ए गल वखरी है कि आपा जोत देख नहीं रहे, पर जोत तो बिना कोई भी नहीं, सारिया अंदर जोत परमात्मा दी है। हुण जोत नजर क्यों नहीं आउंदी? पांडे ने सवाल किया, पातशाह जे सारिया अंदर जोत है ते जोत नजर क्यों नहीं आउंदी? साहब कह लगे, पांडा जी गल इंज है कि दुनिया दे लोकां ने जात दी दीवार इतनी वड्डी कर दित्ती है कि सानू जोत नजर नहीं आउंदी। हुण जद सामने दीवार ही खड़ी हो जाए जोत किवें नजर आवे? कहिंदे ने जोत है अंदर, पर इसे अंदर एक होमे दी जात दी दीवार भी खड़ी होई है। जद तक वो दीवार नहीं गिरदी जोत नजर नहीं आउंदी, क्योंकि जोत तो अंदर ही है ना, बाहर नहीं है, जोत अंदर है। पर उस जोत नूं प्रगट करना है। वो जोत प्रगट किवें होवेगी? साहब कहिंदे ने जात ना पुछ, जोत दी पहचान कर। ते जोत दी पहचान ता हो सकती है, आपां पहले जात भुल जाइए, आपां जात नूं छड़ दईए, ऊंच नीच छड़ दईए, अमीर गरीब छड़ दईए, वड्डा छोटा छड़ दईए। कते मन च ऐसा ख्याल ना आवे, कहिंदे ने फिर जोत दी पहचान हो सकती है। साहिबा ने बाणी विच

नानक कस मल जाए ना है रामदास सर अमृत सर सिफती दा घर। हुण अमृत सर ऐसा हरमंदर है जिदी एक सिफत नहीं अनेकां सिफतां केड़ी केड़ी कीती जा अमृत सर सतगुर।

हे परमात्मा, मरण तो बाद मुक्ति किन्नी वेखी है, मुक्ति देनी आ ते जिउंदियां दे, जिउंदियां मुक्ति चाहीदी है मरण तो बाद नहीं। ते ए पंता ने जो मेरी बेपती कीती है मेरी नहीं तेरी है, क्योंकि मैं तेरी भगती करना आया मंदिर विच, इन्हां मैनू चुक के बाहर मारे है। कहिंदे ने कानपुर कोलों बर्दाश्त

मैं तेरे दरदा भिखारी हां मंगता हां आरता मैंने मंगता जिथे आरता का अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गो मैंने पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान।

भी अकी चढ़ाओ चढ़ंदा। भगत कबीर जी नू सेवका ने पूछया सी, महाराज तुसी स्वर्ग भी निंद दिते ते कह रहे हो भाई पूर्ण गुरु

भगत सैन जी दे घर हो रहा है। भी कौन कर रहा है? महापुरुष प्रौणे आए संत जन प्रौणे आए

भगत सैन जी दे घर आई। सोभा सुनी है ना सिमरन वाला है। भगत सैन जी ने भोजन पानी छकाया।

कीर्तन विच बैठा है, अखां मूंद के अपने गले विचों सोने दा हार लाया ते जाके सैन जी दे गल विच पा दिता। पता ही नहीं लगा निरंकार चले गए ने।

बाबा बुढ़ा जी वापस आए। जो पाई सा पाई गुरुदास जी जवाब लेके आए सन, ओहो ही जवाब बाबा बुढ़ा जी गुरु अर्जन देव जी नू देन लगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज समाधि स्थित हो गए। अंदर गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दे चरना कमलां विच अरजोई करन लग पए। अंदरों जवाब आया कि ओ बाणी जो वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड अवर ना कोए। ए गुरु अर्जन, ओ बाणी लैन जाना तैनू आप पवेगा। अंदरों जो आवाज आई ते गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्काल हुक्म मंदे हुए तैयार हो गए। संगतां नू कहन लगे कि बाबा मोहन जी पास बाणी लैन मनु जाना पवेगा। संगतां तैयार हो गईयां, महाराज असी भी आप दे नाल चलदे हां। गुरु अर्जन देव जी कहन लगे, नहीं बई, गुरु नानक दा हुक्म केवल मैनू ही होया है, मैनू ही जाना पवेगा। जां तैयार होए ते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सरंदा चुकिया ते चल पे बाहर। नंगी पैरी चलन लगे, संगतां ने लिया के जोड़े अगे रखे। जदों गुरु अर्जन देव जी ने देखिया संगतां दा प्यार, संगतां नू आशीर्वाद दित्ती ते नाल बचन कीता, बई मैं किसे दे घर नहीं जा रहा, मैं ते अपने महापुरुखां दी बाणी नू लैण वास्ते जा रहा हां। ते बाणी नू लैण जाना होवे ते फिर गुमान किस चीज दा, अहंकार किस चीज दा, उत्थे ते नंगी पैरी ही जाना पवेगा। गुरु अर्जन देव जी दा प्यार देख के संगतां दियां अखां विच आंसू आ गए। गुरु अर्जन देव जी महाराज चल पए ते चलदे चलदे नंगे पैरी जा पहुंचे बाबा मोहन जी दे द्वार ते। मगर जिस तरह पाई सा पाई गुरुदास जी ने, बाबा बुढ़ा जी ने दरवाजा खटखटाया सी, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दरवाजा नहीं खटखटाया। बैठ गए दरवाजे ते, दरवाजे ते बैठ के लिया सरंदा, सरंदा छेड़िया

अपनी बिरथा को हर अपने स्वामी पे, अपनी बिरथा को हर अपने स्वामी पे, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा, जो तुमरे दुख तत्काल

मन लाजुम रसा, अवरा पै के मन लाजुम रसा। महाराज सतगुरु भी वचन कर रहे ने पाई, जो मन दी बिरथा है ये वागुरु अगे आख, किसी मुरुख कोल ना कहो। ये बंदा मन दी बिरथा, मन दी गल लोकां पास कर दे, मन लोकां पास फरोल दे। महाराज कहते नहीं, जे लोकां कोल गल करेगा अपना दुख दसेगा वो तेनू भी दुख होर सुना दूगा। बंदे कोल मन ना फरोल, वागुरु पास फरोल। मन दी गल गोज गल जी की कीजे सतगुर पास। जो मन दी गल है ऐ मनुख, जो तू किसे कोल नहीं कह सकदा तो गुरु कोल कह दे, वागुरु कोल कह दे। गोज गल जी की कीजे सतगुर पास, ता सर्व सुख पाई। मन दी गल कोई वरी है कोई दुख है गुरु नूं आ। महाराज वचन कर दिए ने, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै, ता आगे अपनी बिरथा बहु बहुत कडास। ते अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पै, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। वो वागुरु अगे बेनती कर, जेड़ा एक छिन विच वो दुखां नूं दूर करन दी समर्था रखदा है। महाराज इस वचन विच, इस शब्द विच

नमो श्री भगवती बढ़ली सरोही। ये शस्त्रां की पूजा है। जिस वेले योधे रण विच जूझ देने शस्त्र नूं नमस्कार करके शस्त्र की पूजा उचार देने वो शब्दां दा वर्णन हो रहा है। तलवार दे सारे नां ने भगौती बडैली सरोही ये नाम हैं तलवार दे। शस्त्र की पूजा है। गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे नमो श्री भगौती बडैली सरोही नमो श्री भगौती।

द्वय सुभता हाथ सोही सुभता हाथ सोही नमो लोहे की पोत का झलहे तहंती नमो दीप ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो दीप ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो पान की बान गंगा तरंगी नमो पान की बान गंगा तरंगी तेरे साम है मोक्ष।

0: भाई नंदलाल जी।
1: ताल बे मौला
0: हमेशा जिंदा अस्त,
1: हमेशा जिंदा अस्त। ताल बे मौला हमेशा जिंदा अस्त।

त्रास मिटे, नाम लिए जम त्रास मिटे, कल काल नसे हर सर धैये, लोक परलोक सभी सुधरे। सेवा करन दा फल, सेवा दी महत्ता साहिब गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे, लोक परलोक सभी सुधरे, लोक परलोक सभी सुधरे, हर भगत परापत।

चार ताल दे अंदर यह रीतबद्ध है। इस नूं ध्रुपद ताल भी कहिंदे ने, चार ताल भी कहिंदे, ध्रुपद ताल भी कहिंदे। श्रवण करना

0: चार ताल के अंदर यह जोड़ी का खास संबंध है। जिस तरह इधरों आवाज और तान लगाने पेंदे ने जोड़ी विच इस दे नाल तोड़े और तिहाइयां बजाउणियां पेंदियां ने और खास तौर पर जोड़ी के बोल का और ध्रुपद का संबंध है। तुसी सरवण कीता हुण गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सेव करो करना निवकी तो साहब कहिंदे सेव करी इन्हें की भावत शस्त्र की सेवा और शस्त्र की पूजा। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे
1: सेव करो करना नित की जैसे उच्चार पुनः नाम लिए जम त्रास मिटे कल काल नसे हर स्वर्ण सिधरिए लोक परलोक सभी सुधरे हर भगत प्राप्त होए तिहाइए दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की अस प्रभ छोड़ अवर
0: फतेह सतगुरु की। यह जो जंग विच फतेह हुई है यह किसी आदमी की नहीं यह वाहिगुरु की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहिंदे कि खालसे की फतेह चार कूट विच होएगी चढ़दे तो लेंदे तक खालसे की फतेह होएगी और खालसे के झंडे झूलणगे। उन्हां दे अपने शब्द श्रवण करने गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे
1: लंक लूट लिया लंक

0: देखो खालसे की फतेह चार कूट के अंदर
1: रूम नापत बजाओ शाम मोहरा चलाओ सुनो नंदलाल एहसास प्रगट करूं मैं अपना राज
0: नंदलाल दे नाल गुरु साहब दे वचन हो रहे भाई नंदलाल साहब
1: सुनो नंदलाल एहसास प्रगट करूं मैं अपना राज
2: चार वर्ण
1: एक वर्ण कराऊं
0: वाहिगुरु सिंह को नाम जपाऊं चार वर्ण एक वर्ण करा वाहिगुरु सिंह को नाम जपाऊं
2: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
0: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
1: देख खालसे को तुर्क

0: देख खालसे को पुर्क जाएंगे पार, देख खालसे को पुर्क जाएंगे पार।
1: लाख एक लड़ाऊ चले सिंह
0: किस मुकरण नेगे हस्ती साजे, झूलन नेगे हस्ती साजे, द्वार द्वार पर नौबत सवा लाख जब धुखे पलीता, सवा लाख जब धुखे पलीता, तबे खालसा उदय।

लक्ष्मी पैसिया नू के माया नू हुण जिहड़ा मत्था टेकदा है वो पैसे भी रखदा है ते लक्ष्मी इस तरह वरसन लग पई जिस तरह मीह पैंदा है भाव गुरु साहिबां दे चरणां दे अगे माया दा ढेर लग गया।

लोटा गुआच गया, पैसे गुआच गए, ता सारे पांड सिद्धां कोल गए, साडा लोटा लभ दिओ किसे ने चुक लिया। हुण लुकोया सिद्धां नहीं सी, लभ के किवें देंदे? सिद्धां ने लुको ए लोटा, सिद्धां ने लोटा जान के लुकोया सी। असी लुकोवांगे, भंड साडे कोल आणगे, असी भेजांगे गुरु नानक दे कोल। साडा लुकोया लोटा कोई लभ नहीं सकदा, ते गुरु नानक हार जावेगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ओही गल सिद्धां ने भंडा नूं कहा, ओ जिहड़ा गुरु नानक बैठा है, जाओ ओदे कोल, उस नूं आखो जे ओदे विच कोई शक्ति है ते तुहाडा लोटा लभ देवे। ये सारे भांड धन गुरु नानक साहब दे कोल गए ते बेनती कीती, महाराज साडा माया वाला लोटा लभ दिओ, किसे ने चुक लिया? तां भाई गुरदास जी बयान करते,

आखो सतनाम श्री वाहे। पंडा ने बेनती की, बाबा जानी जान पुरख, वो बाबा नानक वो ते जानी जान। सिद्धा ने जिथे लोटा लुकोया सी गुरु नानक साहब ने उथों कढ़ दिता। हुण लोक जय जयकार करन लग पे। सिद्धा दा लुकोया लोटा कोई लब नहीं सी सकदा, पर बाबे नानक ने लभ दिता। गुरु नानक दी जय जयकार होण लग पई, पर सिद्धा नूं होर गुस्सा चढ़ गया।

तू पखंड करना है। पेख उतार उदास दा, पहला तू उदासियां वाले कपड़े पाए, हुण संसारी कपड़े पा ले। पंगरनाथ कहंदा है, ऐ नानक तू ग्रिस्ती है, तू व्याह कीता है, तेरे बच्चे हैं। तो जिहड़ा ग्रिस्ती है, दियां पुत्रां वाला है, वो रब दा भगत नहीं हो सकता, वो जोगी नहीं हो सकता, वो संत नहीं हो सकता। ये गल पंगरनाथ ने कही। हुण सत्संग तुसी सारे ग्रिस्ती बैठे हो, तियां पुत्रां वाले परिवार वाले, पंगरनाथ दा यह सवाल भी सुन लो। पंगरनाथ कहंदा है, ग्रिस्ती उच्चा नहीं हो सकता, ग्रिस्ती रब दा भगत नहीं हो सकता, जोगी नहीं हो सकता, संत नहीं हो सकता, ग्रिस्ती माड़ा है। ते पंगरनाथ दा विचार है, जोगियां दा विचार है, ते गुरु नानक दा की विचार है, वो भी सरवण करो।

असल विच कुछ जोगी होए महापुरुष जेड़े अपना जप तप गुआ बैठे औरत ते मोहित हो के। हुण जे कोई अपना जप तप गुआ बैठा तो उहदी अपनी कमजोरी। इन्हां लोकां ने यह नियम बना दिता।

जिथे कोई जन्म लवे ओ जगह सूतक आली है। ते सूतक दा मतलब है झूठ। धन गुरु नानक साहब ब्राह्मणा नु कहन लगे, तुसी कहंदे हो जिथे कोई जन्म लवे ओ जगह सूतक आली है। ते साहब जी कहन लगे, सूतक दा मतलब तुसा झूठ के है। ते साहब जी कहन लगे, जे तुसी सूतक दी गल करदे हो ते फिर सूतक तों ते कोई भी जगह

अगर किसी दे जम्मण दे नाल ही घर विच सूतक है फिर सूतक को किस तरह बचोगे? सूतक तो क्यों कर बचोगे? सूतक पवे रसोए, सूतक ता हर वेले तुहाडी रसोई विच है, क्योंकि रसोई विच अनाज है, खाण दीआं चीजां ने, पानी है और इन्हां विच कीटाणु हुंदे ने। छोटे छोटे जीव परमेश्वर दे पैदा कीते हुए हुंदे ने। सूतक ते तुहाडी रसोई विच हर वेले है, किस तरह बचोगे?

एक औरत मर जाए पालिए कहते ने लभना ते फिर इंसान विआह वास्ते दूसरी औरत लभद औरत दे बगैर जीवन नहीं पंड होवे बंधान और दुनिया दा हर रिश्ता।

और वड्डा होके जिसने जन्म दिता है उसे नु फिर कहन लगना है कि तू नीवी है, तू आदमी दे बराबर नहीं, तेरा दर्जा इंसान दे बराबर नहीं। पर धन गुरु नानक साहब कहंदे ने ठीक है, कोई जीव माड़ा हो सकता है पर सारी

नीच ओ है जिदे कम नीचा वाले, माड़ा ओ है जिदे कम माड़े ने, चाहे औरत है चाहे मर्द है, ए परमेश्वर दे बनाए ने और परमेश्वर दे बनाए कदी माड़े नहीं होंदे। इस करके पाई सुच्चा ओ है जिदा मन सच्चा है, कला नहान दे नाल तीर्थां ते भजे फिरन दे नाल इंसान सुच्चा नहीं होंदा। आओ जे सूतक मनना है तां विकारां ते मनो ताकि असी विकार ना करिए। बच्चा जम्मण ते सूतक